0: is Leica Radio across Greater London.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
9: T's and C's apply.
0: Don't forget to turn on Kush with the Mid-Morning Show from 10 a.m.

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर 14 से 21 जून स्टैनमोर में हो रहा है महासोम यज्ञ। सभी के लिए एंट्री फ्री, तो आप सभी अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 यज्ञ और शाम 4 से 7 मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यजमान सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू श्री स्वामी नारायण टेम्पल, फूड लेन, स्टैनमोर, HA7 4LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagya.com, कॉल 07932623852।
3: Wake up, feel good. It's Donnie Brasco on breakfast.
4: Like a radio.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com.

0: करें 07300998823।
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर।
3: 11plusteacher.co.uk offers 11plus tuitions and 11plus mock exams face to face and online. WhatsApp 07835 929 287 or visit 11plusteacher.co.uk।
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
5: Kickstart your day the right way with Brasco on Laika Radio.
6: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
3: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
3: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
2: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
4: मॉम ऑलवेज सेड बेटा क्लोव एंड नीम कीप द माउथ हेल्थी नाउ दैट सेम ट्रस्टेड विजडम कम्स फ्रॉम बैद्यनाथ ओवर 100 इयर्स of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Like a Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
8: करे चलो करो
9: Good morning, Donny. What a lovely song. It is amazing to just wake up to this song. The song is बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम
8: सच्ची तो आपकी शादी हुई है

0: Flexible, built for business.
1: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
2: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
1: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
3: नेक्स्ट खुश ऑन द मिड मॉर्निंग शो ऑन लाइका रेडियो London.
4: Hiya, it's me, Raj Badin. Catch me every weekday afternoon with my Choice Active, Filmy Scramble, A Lyrical Miracle and The Big Question. That's 4 p.m. on Leica Radio Greater London and Leica Radio Midlands.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th
2: of June.
3: अल नूर पुराना बाइतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है
4: अल नूर फूड्स विशेस यू हज एंड ईद उल अधा मुबारक
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
6: Hi, this is Messa. Join me on the Sunday Wrap every Sunday from 7 p.m. to 10 p.m. only on Laika Radio.

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
4: Want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
5: The people of Britain have bought loads of noise-cancelling headphones. With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 28.9% APR representative variable and 28.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

Radio. Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द Star Tours Experience. Visit startours.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
3: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
3: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
2: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
4: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
5: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
4: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
7: This Eid ul Azha I stay close to what matters with Remitly like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Al Noor, purana ba'itmat naam, nayi range ke saath, premium pulses, pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak, aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
9: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: This weekend, it's all about Artif Aslam. Artif's song every hour on Leica Radio, Greater London.
9: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: Carotino Bitter Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Carotino Bitter Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Bitter Ghee.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
4: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: देने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
3: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
3: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
2: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
4: नेक्स्ट The biggest romantic songs are up next on Love Sound.
5: Like her. Hello, this is Annika from The Weekend Musty Show. Make sure you catch me between 1 and 4 every Saturday and Sunday across London and the Midlands.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर वेल प्लान्ड कंफर्टेबल ट्रस्टेड दैट्स द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस कॉल 0208 900 2323 और विजिट startours.co.uk
3: द ग्रेटेस्ट एशियन लव सॉन्ग्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: कागज लाए, कुछ शीशे झूठ बोलते हैं।
1: Laika Radio.
2: Time for another Laika Love Classic.

0: होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
1: The biggest Asian love songs in the capital.
2: Laika Radio.
1: The Love Sound.